बिंदर बन में रंग किया, कल मैं बेद अथर बन हुआ ना खुदाई अलो भया, नील बस्तर ले कपड़े पहरे।

कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे आपूर मथा टिका तेड़ तोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश तान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौकी ऊपर किसे ना जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे मत पिटे एहो अन्या साडा फिट है तन फिट है फेड करेन मन झूठे चुली परे को नानक सच त्याही है सुच होवे ता सच पाए पौड़ चित अंदर सब को ਵੇਖਣ ਤਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵੜ

पहला जे मोहा का कर्म है कर्म पितरे दे वस्त से आनी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुसफिये करे नानके गासों मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

0: है अज धरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखिया सूतक पवर सो नानक सूतक मन उतर ज्ञान उतारे तो महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है जहवा सूतक को अखी सूतक विखना पर त्रय परतन रूप।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चकर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पीख को कह ना सकत केह।

हृदय बसै अकहियो सोई रास तिन्हि जाताओ मुख हौ भगत उचरै अमर गुर इतरंग राताओ मस्तक निशान सच्चाओ कर्म कल जोड़ कर त्याओ परस्याओ गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पायाओ परस्याओ गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पायाओ चरण कमल भज कमल प्रगास भई दरस दरस साम दरस दिखाए है सबद सुरत अनहद लेवलीन भई ओन मन मगन गगन पुरशाई है प्रेम रास बस होए बिसम विदेह पई आत अश्चर्य मोहिरत हराई है गुरमुख सुख फल महिमा अगाध बोध अकथ कथा विनोद कहत न आए है जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछुड़िया मेले प्रभु हार दरगह का बसीठ हार नामो मंत्र दृढ़ाईदा कटे हौ मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया

रंग परंग अनेक न जापन करते बा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा कर पला।

0: नानक दासन दास सुदे आगे बिनवता सलोक।
1: कमन गुरु पानी पिता महत तरत महत दिवस रात।

रंग परंग अनेक जापन करते बा जिया अंदर जियो सबकी जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद वधाए तुद घर माण महता ते जे अपने आप जा रे सर्ब कला परपूर।

रंग परंग अनेक न जापन करत बाजिया दर्जियो सबके जान ला सबक तेरे वस तेरा कर पला तेरे कर नंद वधाई तुद कर।

तेरा अंत ना जाई लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियों जन किती सो पार पया। कहो नानक करते क्या बाता जो कुछ करना।

तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातार। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारण हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे जोज विडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान। जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबान। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निह चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सब नीति आया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सरवरड़ पई ले निवासा। पानी पावक तिन्ह किया पांक जो मोह पग नहीं चाले। हम देखा तह डूबी अले मन एक ना चेत समूढ़ मना। हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्राणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਪ

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब वैरण को आज संघरिय। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करिय हो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंत। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतर। काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह वध कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सांतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घाट घाट के पट पट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूप। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमंट भयो शंकर अकैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो। दोष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण घाता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काल, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्व सके न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन

दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। सवैयन पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बह भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन बजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब बेसारण अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारण सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनोह वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरै घर तां तेरै सब किश है जिस देहे सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर।

आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत, देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री

रहत दान, बबेक दान, विसाह दान, भरूसा दान, दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल।

एहन सुसहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होए सिफत खसामंदी नूर अरसों पुरसों चटी तुद डिठे सचे पातशाह

सोरठ महला पांजवा सात गुर पूरे पाना तां जपिया नाम रमाना गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी।

श्रवण बिखेठ गौरी लाथी संग मलाए लिया मेर करते संत साध पे साथी कर गह लीने सर्बस दीने आपह आप मिलाया।

भरत षाढ़ बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक युतम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राखो सरणाई सुख टल गुर सेवियै अहनिस सहज सोभाए दर्शन परस आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए हो सिफत खसम दी नूर अर सौ कुर सौ चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाहो सिर शाह दशाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा आगे सुख मेरे मीता पाछे आनंद प्रभ कीता परमेश्वर बणत बनाई फेर डोलत कतहु

परमेश्वर बणत बनाई फेर डोलत कतहु नाही। साचे साहिब स्यों मन मान्या हर सर्ब निरंतर जानिया रहो सब जीय तेरे दयाला अपने भगत करहे प्रतपाला अचरज तेरी वड़ियाई नित नानक नाम त्याई सब जीय तेरे दयाला अपने भगत करहे प्रतपाला अचरज तेरी वड़ियाई।

परस करियो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ धरियो। हम अवगुण परेक गुण नाही, अमृत शाड बिखे बिख खाही। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सु प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीर्त की

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुइना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ का

मन तन तेरो प्राण एक है, सूत है जहान। कौन उपमा देओ बड़े ते बढ़ान, जाने कौन तेरो प्यो अलख पार देओ। अकल कला है प्रभ सर्ब को थान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार। एक जी क्या बखान है, हाँ के बल बल बल बल।

0: दासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थिर हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दो थिर हो
1: सत सत हर सत सत सते सत पणिए दूसर आन न अवर पुरख पौ रतन सुनिए अमृत हर को नाम लेत मन

पर गास को वेद बाणी सहत बेरंच जस गावे जाको सेव मुन गह ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सद साधक अनेक तप जटा जूट भेख किए फिर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम।

ब्रह्मादिक शिव शांत मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग

है। अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु का, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत।

तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जनम जनम दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहां दैसाहु, जिस पा

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवा बोलह भैया राम नाम

मिल संगति गुण गामनो मन राम नाम कर आशा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जान मिलिया हर पासी।

फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बिलावल महला चौथा, पड़ताल कर तेरवां। बोलो भैया राम नाम, पतित पावनो हर संत भगत तारनो। हर भर पुरे रहया, जल थले राम नाम, नित गाय।